0: तेरे मन की यमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: नहीं कभी नहीं।

राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की यमुना का बोल राधा बोल संगम हो।

0: बबी जी मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही हो रहा कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हेलो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जी है ना वो मुकेश पागलूंगा दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा
2: आप सोच
0: तो मैं उन्नी देर गाना ला
2: और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू

मेले में अकेले फिरी बाजार घर में, कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना, मैं क्या गमला पगला दिल।

पसीना छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना प्रेम दराग पुराना पुराना पुराना मैं जस यमला पगला दीवाना हो।

जख्म सीने तलवारां दे हाथ विच, सोने दा काम लोहारां दे हाथ विच। महान भारत दी महिमा वेखो, राष्ट्री मुद्दे गदारां दे हाथ विच। सब काम पुठे, कोई एक अद्धा ठीक भी, कोई अचंगे अफसर भी हैगे ने। मैं ये नहीं कह दिया कि ए तो लैके जेड तक ही है, पर 99% ठग चोर उचके उच्चियां पोस्टां ते बैठे ने। ते जेड़े वधिया जेंटल एजुकेटेड लोग उच्चियां पोस्टां तक पहुंचे सन, वो माहौल वेख के भी उन्हां वर्गे बन गए। जे मीह पै रहा है ते तुहानू भी छतरी लैनी पवेगी बाहर जाण वास्ते, शायद वह भी इना लवेख के इना वर्गे हो गए ने। हुण धार्मिकता की गल होण डई सी, हर पिंड विच दो दो तीन तीन गुरुद्वारे दे मंदिर ने, हर महल्ले च गुरुद्वारा है। एवं लगता है असी धर्म नू बड़े समर्पित लोग हां। पिंड पिंड पिंड दे विच मतलब कि एक ना टुटा जिहा स्कूल होएगा, उहदे कमरे चोंदे ने, दो चार महीने तो उहदा नलका खराब है, एवें 200-300 रुपया नलके ते लगना। पिंड विचों जां पिंड दी पंचायत चों ओह कोई ठीक नहीं करवाएगा, नलका ही ठीक नहीं करवाएगा। इह सरकारां दे काम है। हां जी, कोई टॉयलेट नहीं बनवा के देगा पिंड विचों स्कूल दे विच बच्चियां नूं, बल्कि कोई पखा ही लवा दे, जे पखा खराब हो जाए उन्हें कोई ठीक नहीं करवा के दिंदा। सरकार ही करे जो कुछ करे, तो सरकार की करती है तुहानू पता ही है, सरकार दियां फाइलां किदां तुरदियां ने। पिंड वाले कोई मदद नहीं करनगे, पर पिंड वाले अपने नलायक पुत्र दे विआह ते 20-30 लख दी रोटी खवा देंगे, बाकी खर्चा छड्डो। अपने नलायक पुत्र ते जिहड़ा घर दा काम ही नहीं कर लिया, ते नौकरी चाकरी ते गौरमेंट दा फर्ज बनता, वह वैसे भी उहदे कोल कोई नहीं है। बाकी 4-5 मैरिजां दे ही होने ने फंक्शन मैरिज दे, वह सारे ही हाल जरा अंदाजा ला लो कि पैसा लगता फिर मैरिज के उत्ते। सारा दिन असी आपको अपने धर्म के महापुरशां की जय जयकार करते फिरते हैं, उत्तों बलात्कारी बाबियां की जय जयकार करते सिर पड़वा लेने। बाबे जड़े ने मर्सरी कारां ते तुरे फिरते हैं, तो असी उन्हां दी गोद विच पैसे पाने। बाबे जड़े ने उन्हां कोल 10-10 20-20 प्राइवेट बॉडीगार्ड भी हैगे ने, जड़े डब्बां च पिस्तल ते स्टेना लई फिरन डए ने। अगे 10 कारां बाबे दे जान डईआं होंदीआं, 10 कारां पिछे उहदे बॉडीगार्डां दी, बाकी चुमचिआं दी गल छड्डो यार। जे ये बाबे ने सिखाउंदे ते राम राम करना ने, वाहिगुरू वाहिगुरू करना ने, ते इन्हां नूं बॉडीगार्डां दी जरूरत क्यों पैण डई है, ये की चक्कर है? बॉडीगार्ड ते बदमाशां नूं चाहिदे ने, समगलरां नूं चाहिदे ने जिहड़े दो नंबर दा काम करदे ने, जां वड्डे वड्डे लीडरां नूं चाहिदे ने, उह वी ते पुठे ही काम करदे ने। इह बाबे राम नाम जपाउण वालियां नूं क्यों बॉडीगार्ड चाहिदे ने? हांजी, इन्हां ने समाज विच गंद पाउण दी हद कीती है। दोस्तों, बाबियां दा बाइकाट करो, आपणियां औरतां नूं वरजो इन्हां बाबियां दे, पता नहीं औरतां बाबियां दे अट्रैक्ट इन्नियां क्यों हुंदियां ने, वरजो। पढ़ियां लिखियां औरतां दी नहीं मैं गल कर रहा, आम रूरल औरतां दी गल कर, पढ़ियां लिखियां औरतां दे इन्हां बाबियां नूं जुत्ती ते लिखदियां ने। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੱਟਾਂ ਨੀ ਨਿਗਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ।

सो दोस्तों एसीजी साडा अज दा प्रोग्राम ते प्रोग्राम दे विच थोड़ी जी डिस्टर्बेंस हुई है टेलीफोन दा कनेक्शन करके उहदे वास्ते एक बारी फिर दोबारा सॉरी ते देशां विदेशां च सुन रहे दोस्तों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल अस्सलाम अलैकुम नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल दी लवली एंड स्वीट पीपल ऑफ दिस प्लेनेट।

सत श्री अकाल नमस्ते आदाब। दोस्तों तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी और न्यूयॉर्क तो स्टूडियो तो मैं थोड़े नाल रूबरू हो रहा जी, हाजिर हो रहा थोड़ी सेवा दे विच। ते अज दे प्रोग्राम दी आपां शुरुआत करांगे जी शब्द नाल भाई निर्मल सिंह जी खालसा। कुछ उस तो बाद गीत सुनांगे ते फिर साडे नाल लाल सिंह चीमा साहब जुड़नगे जी खबरां लेके जो कुछ मग दे मसले है दुनिया दे उपर जो कुछ हो रहा है। इस वक्त वड्डियां जंगां लगियां हुई है, पता नहीं किधर किधर खिलरनियां हजे। सो ओदे बारे आपां गलबात करांगे ते उस तो बाद डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू दो घंटे का प्रोग्राम लैके तुहाडी सेवा दे विच हाजर हां जी। लो शब्द नाल शुरुआत करते हैं जी। लो जी

0: कि गांव वाले रहते हैं ये बहुत अच्छे हैं, हमें ना घर से कुछ ना कुछ बनाकर दे जाते हैं। हमारा आज ये जेड़े साडे चाइना दे बॉर्डर दे उत्ते डटे ने बंदे, हां जी ठीक, बाकी जेड़े हेरा फेरिया आले ते मतलब कि अफसरां ने लुट डाई है, उधर जेड़े जवान बर्फां दे जेड़े साह बाहर कढ़दे ने ते किन्ना किन्ना धूं निकलदा है इन्नी ठंड दे विचों खड़े ने साह दे विचों। हांजी ओ कह दिया कि राशन थोड़े दा कारण कोई भी होए हां भी राशन नहीं पहुंच रहा, कोई भी होवे क्यों नहीं हो की खान खान गए उत्थे बेचारे।
1: हां
0: जी बहुत आभारी है ये गांव वाले। गांव वाले कौन हो झोंपड़ियां झापड़ियां वाले जेडे पर उत्थे गांव उत्थे कित्थे आ गए एहो जी बर्फ दे भेडां वाले जेडे आ गए ने ओ जो घर च सुक्का बंदा बनिया हुंदा उहनां नूं देख के जांदे ने फौजियां नूं भी आ लो तुसीं चलो इहदा ते कोई रीजन हो सकदा ना क्यों नहीं राशन पहुंचिया। आ जेड़े फौजी ने दाल विखाली सी उन्हें बाहर कढ दिता जाएगा भाई आर्मी दे विचों क्योंकि तू डिसिप्लिन भंग किया है। आर्मी दे विच भी हुण बड़ी हेरा फेरी जे बिफोर्स तोपां ते राशन दे विच जो जो होण डिया इन्हां दे वड्डे वड्डे अफसर जेड़े ने तगड़े ही ओह भी तगड़े ही मतलब की मैं तुहानूं कहां कि हेरा हेरा फेरी दे कुंभ ने ओह भी डिसिप्लिन जमात हुंदी सी आर्मी।
1: वाह जी वाह
0: वाह जी वाह। हां जी हां जी ते बस तुसीं भी जिस तरह वेख लो ओहदा पुत जिहड़ा वा ओह पापा कह लैंदा ते बेचारे मैनूं ना गल इक चेते आई जी 18 साल अमेरिका च लोकां दे रहिंदिआं दे पेपर नहीं सी बणे जो ब्याह करा के बेचारे उधर चले गए। दसो जिहड़ा बच्चा 12-13-14 सालां दा होएगा ओह किड्डा होया गा जे अपना प्यो नहीं जे वेख्या। जदों मैं अमेरिका पहली बारी गया हां ते उत्थे इक जनानी सी जवान जी जिहड़ी शकल तो मैनूं लगदा है जिस तरह यह बीमार हुंदी है जां मैंटली अपसैट हुंदी है।
1: हां जी
0: ओह किते जवानी च अपने बच्चे दो छड्ड के इधर आ गई ते किते पता नहीं 10 साल हो गए किन्ने उहदे पेपर ही नहीं बने। ओह किसे दे घर आउंदी हुंदी सी ते उहनां दे बच्चिआं नाल खेडदी रहिंदी हुंदी सी सारी दिहाड़ी अपने बच्चिआं नूं याद करके अखां थले एडे एडे डूंग पए सर औरत दी अखां दे थले ते बहुत घट बोलदी ते जिस तरह बीमार जां किते थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब लगदी सी ओह ते ओह जदों चले गई ते उस घर वाली जनानी ने मैनूं दस्या भी ये रोज अपने थोड़े पता नहीं 12-14 साल हो गए ने अपने बच्चिआं नूं निक्के निक्के नूं छड्ड के आई सी। दुनिया दे बड़े बड़े वड्डे दुख ने।
1: हां जी हां जी लो जी मैं फिर अपने आवा टिकाने ते।
0: हां
1: जी मेरी कविता दा सरलेख है राजा मुल्क डबोई जावे। एक अपने बार्डर दे उत्ते पट्टी वाल दा मिनिस्टर है उन्हें अपने घर सद्या किसे अफसर नूं बड़े वड्डे अफसर नूं कहिंदा भी इस इलाके दे जिन्ने ठेके ने ना मेरे प्यो दे नां ते कर दे।
0: अच्छा
1: ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਨੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਟ ਮਾਰਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ।
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਚ ਸੁੱਟ ਆਇਓ
0: ਆਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ
1: ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸੁਸਾਈਡ।
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਤੇ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਾਂ ਬੋਲਣ ਜੀ ਸੁਣਿਓ। ਰਾਜਾ ਮੁਲਕ ਡਬੋਈ ਜਾਵੇ ਬਣਦਾ ਦੇਸ ਧਰੋਹੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾ ਮੁਲਕ ਡਬੋਈ ਜਾਵੇ ਬਣਦਾ ਦੇਸ ਧਰੋਹੀ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੌਲਤ ਕਰ ਕਰ ਕੱਠੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਢੋਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੌਲਤ ਕਰ ਕਰ ਕੱਠੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਢੋਈ ਜਾਵੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਖਵਾਵੇ ਤੇ ਭੁੱਖਿਓਂ ਬੁਰਕੀ
0: ਖੋਈ
1: ਕਾਤਲ ਚੋਰਾਂ ਰਿਸ਼

दोस्तों, ये संदर्वेश कलाकार यमला जट, क्या बात है, बड़े पुराना गाना मैनु एक लब्बा सी, ते मैं सोचा भी क्यों ना तुहाडी खिदमत विच भी पेश किया जाए। उम्मीद है कि तुहानू पसंद आया होगा। सो दोस्तों, मैं एक अपनी रचना तुहाडे नाल सांझी कर रहा, ते तुसी मैनु एक कॉल मार छड्डियो, मिस कॉल, ते मैं अपनी रचना तो बाद तुहाडियां लाइना खोल देंगा, ते तुहाडे नाल गलबात करनी शुरू करा। रब्बा सोहणिया सामने आ, भाई रब्बा सोहणिया सामने आ, लुक लुक के ना जिंद तड़पा, आ विचोले अपने करके लांबे। ठीक है जी। रब्बा सोहणिया, सुभा सिंह जी, मैं अपनी रचना सुना ला, मैं आया तुहाडे आ। दोस्तों, बहुत ना एक शशो पंजी जी नहीं, कोई अद्धी दुनिया कहती है जी रब ना दी कोई चीज ही है नहीं, कोई कहते बस रब, रब भी नहीं सारी दुनिया बनाई है। कुछ विद्वाना का विचार है कि दुनिया ने रब बनाया। भाई ठीक, आपो अपने विचार ने, हां जी, कोई भावनावां नाल चलता है, कोई साइंस नाल फिजिक्स नाल चलता है, ते हर एक नू, हर एक दा जिहड़ा मतलब की विचार है वह मुबारक। मैं अपने जिहड़े मन दे हाव भाव है ना, वह पेश करन लगा कि रब्बा सोहणिया आ सामने आ, लुक लुक के ना जिंद तड़पा, आ विचोले अपने करके लांबे, आ सीधी अख नाल अख मिला, विचोले अपने करके लांबे, सीधी अख नाल अख मिला, और रब्बा सोहणिया सामने आ। नहीं, कोई अद्धी दुनिया कहती है जी रब ना दी कोई चीज ही है नहीं, कोई कहते बस रब, रब भी नहीं सारी दुनिया बनाई है। कुछ विद्वाना का विचार है कि दुनिया ने रब बनाया। भाई ठीक, आपो अपने विचार ने, हां जी, कोई भावनावां नाल चलता है, कोई साइंस नाल फिजिक्स नाल चलता है, ते हर एक नू, हर एक दा जिहड़ा मतलब की विचार है वह मुबारक। मैं अपने जिहड़े मन दे हाव भाव है ना, वह पेश करन लगा कि रब्बा सोहणिया आ सामने आ, लुक लुक के ना जिंद तड़पा, आ विचोले अपने करके लांबे, आए सीधी अख नाल अख मिला, विचोले अपने करके लांबे, सीधी अख नाल अख मिला, और रब्बा सोहणिया सामने आ। तेनू कादा डर है कि तू लुकने वाली केड़ी

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।